मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट

इस महिमा विच मन बिरती एकाग्र करके सुरत द्वारा सतगुरु दे चरणा ते सिर रख दिता है, चरण फड़ ले और महिमा कर रहे हो।

अंदर बोल दी, अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही।

बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गई, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गई, जड़ हो गई जीव, हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीव नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जेड़ियां बाहर नहीं दिसदियां, अंदर उन्हां नाड़ां विच

जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास, अंदर

तंग गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तू शहनशाहां दा शहनशाह है। तेरे समान संसार

आगे मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जाऊंगी। ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर की जाऊंदा। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलां दा हाल जानता है, क्योंकि तू अंतर जामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पीछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदो अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनी है पर सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुद। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीश चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते। दया सिंह तू भी शहीद।

आनंदपुर का किला उजड़ गया। चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सात सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ए अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ए दुश्मना दे कई दलां दे दल नूं मार मुकाऊं ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दी चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा वीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनू रोक के दसो। सात सगत बोलो श्री। अनेका ही नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई, दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगा लंघ गए। दुश्मन घेरे नू तोड़ छड़िया, तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकदा, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मुसलत पर सभा अपनी लगाई है। यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझसा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हुए भाई साहब भाई नंद लाल जी

को पायो तिन तिन अपनो राज लायो जिन जिन तनक सिद्ध को पायो तिन तिन अपनो राज चलायो तिन तिन अपनो राज चलायो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक दे अंदर अपनी पावन गुरबाणी ते अकाल पुरख दे सामने होया होया प्रोमिस गरीब नूं आज सचे पातशाह जी दे सामने कीता होया वचन भई मेरे अकाल पुरख नाल मेरी केड़ी केड़ी गलबात होई तां मैं संसार दे अंदर अवतार धारिया। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह अपने पहले जन्म दी हिस्टरी दस रहे ने बचित्र नाटक दे अंदर ते आरंभ करदे हन भी जदों संसार दी उत्पत्ति होई किन्ने राजे महाराजे आए किन्ना वंश विचों जन्म लैंदिया होया साडी ए सोढ़ी वंश उत्पन्न होई। गरीब नवाज सचे पातशाह ने कथन

पहने कन विचो मैल कटी ते मद ते कीटब नाम दे राजे जेडे राक्षस सन उन्हां दा जन्म होया। दूजे कन चो मैल कटी भी सृष्टि बन गई। प्रथम कान ते मैल निकारा ताते मद कीटब तन तारा। दूतिया कान ते मैल निकारी ताते भई सृष्टि सब तारी। कहंदे भी ए मद ते कीटब दा युद्ध बड़ा समा हुंदा रहा, बड़ा समा हुंदा रहा। लड़दे रहे दोनों बली सन, आखिरकार युद्ध लड़दियां लड़दियां दोनों दे दोनों जड़े हन मौत दे घाट उतर गए, मर गए। इन्हां दे शरीर दी जड़ी आ चर्बी सी ना पानी अंदर डिग गई। पानी अंदर डिगण दे नाल मिज जड़ी सी ना मेदा पानी विच डिगया। गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे वी अकाल पुरख बाच ओ लिखदे ने भई ए मेदा डिगण दे नाल ए बॉडी पानी दे अंदर डिगण दे नाल उस दिन तो धरती बनी, इस दा नाम मेदा।

ताते सूरज रूप को धरा। इन्हां दे विचों बंस चली ते सूरज नाम दा राजा पैदा होया। सूरज नाम दा राजा संसार दे अंदर काफी समय तक राज करदा रहा। ताते सूरज रूप को धरा।

बड़ा जुल्मी बादशाह सी। औरंगजेब ने हिंदुस्तान दे लोकां ते इतना जुल्म कीता कि हद मुका दित्ती जुल्म दी। हिंदुआं नू जबरदस्ती मुसलमान बनान लगा, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिते। इतना जुल्म, धार्मिक रौ रीतां ते पाबंदी लगा दित्ती गई। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी, और फिर आप अपने हाथ विच कृपान फड़ी और हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब नूं ए गल कही, तेरे जुल्म दी अत हो चुकी है, ते हुण मैं इस कृपान दे नाल तेरा जुल्म खत्म करांगा। और सचमुच गुरु साहिबां ने मुगल राज दियां जड़ां पुट के रख दित्तियां। हिंदुस्तान विचों मुगल राज दा हमेशा वास्ते खात्मा कर दिता। इतिहास गवाह है कि गुरु साहिबां दियां कुर्बानियां ने इस जुल्मी राज दा अंत कर दिता।

तू कोई भी है किसे भी जात दा, तू अमृत छक ले तेरी हुण कोई जात नहीं। इको वर्गा रूप दिता और हुक्म कीता कि जिन्हें जुलम दे खिलाफ लड़ना है, जाता पाता तो उत्ते उठना है, मनुखता दी सेवा करनी है, आओ मेरे नाल खड़े हो जाओ, इत्थे मर के जीवन मिल जाए, इज्जत गुआ के जीवना

महाराज इकले ही आनंदपुर साहब नूं वापस मुड़ पाए। उधर दुश्मन भजा जा रहे, तीन चार मील दुश्मन भजदा गया, पर अगे जाके ओ दुश्मन डट के खलो गया, क्योंकि जेरी फौज तीन चार हजार ओ पिछा छड़ के आए सन, ओ उथे खलोती हुई सी। दुश्मन डट के लड़न लग पया, अगे ते सिंह दुश्मन नु पजांदे आ रहे सन, ते हुण सिंघां दा पैर पिछे पैण लग पया। जदों पैर पिछे पया तां ख्याल आया कि गुरु किथे, पिछा मुड़ के देखिया पर दूर दूर तक गुरु साहिबां दा कोई पता नहीं। हुण दिल होर टुट गए, जित दी खुशी विच गुरु दा कहा नहीं मन्या, गुरु साथ छड़ के चला गया। जे गुरु वापस ना आया असी कदी भी जित नहीं सकदे, और गुरु तो बगैर असी कुछ भी नहीं। फैसला करके पांच घोड़ सवार पजाए, जाओ गुरु नु मोड़ के लियाओ। घोड़ सवार भजे, नौरंग सिंह घोड़ा पजा के गुरु साहिबां तो अगे निकल गया। परिक्रमा कीती, घोड़ा पजांदे होए ने घोड़े तो काली नाल छाल मारी, अते उची सारी नीले घोड़े नु कहा, ओ नीले आ तेन सौ बाजा वाले दी जे एक कदम भी तू अगे पुटिया। गुरु दी सौ सुनी, नीला घोड़ा उथे रुक गया। नरंग सिंह ने गुरु साहिबां दे चरणां ते सिर रखिया ते कहा, पातशाह जित दी खुशी विच तैनू भुल गए, पर हुण पता लगा तेरे बगैर असी कुछ भी नहीं। साहिबां ने घोड़ा उसे वेले वापस मोड़ लिया और हवा दी तरह घोड़ा पजाया। उड़दी धूड़ विच कलगी दी लिशक सिंघा ने देखी, लालियां चढ़ गईयां, आ गया बाजा वाला, आ गया साडा कलगियां वाला, हौसले वधे। ऐसी साहिबां ने तीरां दी मार मारी, देखदियां देखदियां दुश्मन दा नाश होया, गुरु साहिबां दी जित हुई। हुण सारे सिंघां ने गुरु साहिबां कोल खिमा मंगी, तां साहिबां ने इक गल कही, सिंघो इक गल याद रखो, एक दी आग्या मन्नोगे, एक दे पिछे चलोगे, एक अकाल पुरख दी ओट रखोगे, ते दुनिया दी कोई ताकत तुहानू हरा नहीं सकेगी। अगर तुसी सारे वखरे वखरे राह बना के चलोगे, ते फिर याद रखो मैं तुहाडा कदी भी साथ नहीं देवांगा। क्यों? मैनू सिख प्यारा नहीं, मैनू रहत प्यारी है। असूल प्यारे ने, ते जिहदे असूल नहीं, जिहड़ा रहत विच पक्का नहीं, उहदा ते मेरा संबंध कोई नहीं। अज सिखां दा इसे वास्ते ये हाल है, कई दल कई आगू कई राह, पर गुरु साहिबां दा फैसला है, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जदू तक सिख सचमुच सिख बनेगा, खालसा बनेगा, मैं साथ देवांगा। ते जेड़ा सच विच नहीं, जेड़ा रहत विच नहीं, ओदा मैं कदी साथ नहीं देवांगा। आओ गुरु दे उपदेश ते चलिए, चढ़दी कला विच रहिए, अणख नाल जीविए, ताकि दुनिया विच आया साडा सफला होवे। साहिबां ने कहा कि मैं आप भी उस परमेश्वर दा भेजा होया आया हां, और सिख हूं अपने ही मन को, ए लालच हों गुण तोय उचरो, जब आव की औध निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो। मैं लड़ना है जुल्म दे खिलाफ, और मेरा सिख हमेशा

0: सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नू उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जियो वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतह।
0: सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असा सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया है। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी रहो इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करन वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करन वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिक्र नाल

जाना है। मेरे मन मिष्ट लगे प्रिया बोला, गुरबाहे पकड़ प्रभ सेवा लाए, सद दयाल हर टोला। प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रत पालक, प्रभ तू ऐथे बड़ी सावधानी जे रखनी पैंदी, फिर भी कई बार थिरकदी है मत। प्रभ तू ठाकुर, सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच ओंकार तो बिना किते ठाकुर लिखे नहीं। तो सावधानी करदिया करदिया भी कई बारी अंदरले भय नाल आपे लगजिश खा जाती है। प्रभ तू ठाकुर, तां वी इसदा इह अर्थ नहीं कि कोई निपुन है। प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रत पालक, मोहे कलत्तर सहत सब गोला, मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं बोला। किथे टिकना है जी, प्राप्ति किस की करनी है, जे तख्त बैसाले तां दास तुम्हारे। हों मैंने अंगता दा तां भाव हो गया है, जे तख्त बैसाले तां दास तुम्हारे। जे परमेश्वर ने अपनी रजा विच ये नाच नचाना है, सिर ते तख्त है, छत्र है, तां तेरा हुक्म ही है। तां जे ते लैके कास बढ़ाउनी है, तां शिपा कोई नहीं, गिला कोई नहीं, गलोच कोई नहीं, रोसा कोई नहीं, क्योंकि परम ज्ञान हो गया है। ते अज्ञान विच रुठना हुंदा है, ज्ञान विच रजा विच टिकना हुंदा है। अज्ञानी मन रोस करे, गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने हमेशा रब नाल अज्ञानी रुठदा है। ज्ञानवान ने वो तो कहंदा है, प्रभ जे तख्त बैसाले तां दास तुम्हारे, कास बढ़ावे के तक बोला, जन नानक के प्रभ पुरख बिधाते, मेरे ठाकुर अग है अतोला। आओ सारे ही आखिए सतनाम श्री वाहे। तो कबीर साहब जी दे शब्द द्वारा श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ये फरमा दे ने, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई, उस परमेश्वर दे प्यार नू या परमेश्वर दे हुक्म नू अंदर रिड़को टिकाओ, ते पहुंचिए किथे सहज अवस्था। इसका यह भाव है, सियाने महापुरुषों तो सुनिया है कि जे इस गल का ख्याल न रखे, जे दुध रिड़कन वाली हुण तां गल होर हो गई है, जे रिड़कदी जावे ते उस अवस्था का ख्याल न रखे कि किसले मक्खन बन गया है, तो कई बार मक्खन बन जाण तो बाद वो लस्सी का रूप हो जाता है, विचे ही रल जाता है, ते बड़ी खेचल हुंदी है फिर उसनू असली रूप विच बदल। ऐन इसे तरह नितनेम करदियां कई बार कौड़ वध जांदी है, बाणी पढ़दियां कई बार गुआंढी तो असी आप विलखण हो जाते हाँ कि यह पढ़ता ही नहीं। नहाद्या मैं पिंडा च वेख्या है, डोल वाला खड़का कि लोगों तक खबर हो जाए पे 3 बजे नहा है। जे सहज बलोवो ना किया जाए तो मक्खण बनता बनता भी लस्सी च रल जाता है, एक इशारा है। तो कबीर साहब जी ने बार बार इस सखाई में आख्या है, ते श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे ने पिया गुरसिखो, ऐ उपदेश भी धारण करने वाला है कि तुसा सहज ही अवस्था ते टिकना है। तो आप कहंदे ने

अत कल्याणकारी अत सुखदाई अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तामी चंगा ही है रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने आ गई अपना बोले आप सुने।